आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।

प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो ओवजे तोजिक और आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक भाग में। हमारे सांस्कृतिक भाग में हमने तय किया कि आपको हकीम अबुल कासिम फिरदौसी के बारे में बताएंगे। हमारे साथ रहे। حکیم ابوالقاسم فردوسی تاجکی فارسی کوی تھے جنہوں نے جگت پرسید شاہنامہ کی رچنا کی۔ وہ تاجکی فارسی ساہتیہ کے سب سے پربھاوی ساہتیہکار ہے۔ شاہنامے میں انہوں نے 60ویں صدی میں فارس پر عربوں کے وجے ہونے کے پہلے کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ رچنا بعد میں فارس کی راشٹری مہاکاویہ بن گئی ہے۔ فردوسی کا جنم 920 عیسائی میں خراسان کے توس नामा कस्बे में हुआ है। असदी नामा कवि ने उसे शिक्षा दी और कविता की ओर प्रेरित किया है। उसने पौराणिक राजाओं के संबंध में उसे एक ग्रंथ दिया, जिसके आधार पर फिरदौसी ने शाहनामे की रचना की। इसमें 7000 शेर मौजूद है। वो 35 वर्ष तक इस महान करिया में व्यस्त रहा है और 25 फरवरी 1010 ईसाई को इसे पूरा किया है। इस समय वो 85 वर्ष का हो चुका था। उसने ये काव्या सुल्तान महमूद गजनवी को समर्पित किया, जिसने 999 ईसाई में खुरासान विजय कर लिया था। उसे केवल 20,000 दिरहम प्रदान किए गए। फिरदौसी के तन बदन में आग लग गई। वो अपने देश की हिरात की ओर भागा, किंतु भागने से पूर्व एक कविता शाहनामे में जोड़ गया, जिसमें सुल्तान महमूद की घोर निंदा की गई। शाहनामे में फिरदौसी ने फारस के पौराणिक बादशाहों की, जिसके कारनामों से वो अत्यधिक प्रभावित था, बरी की प्रशंसा की है। उसकी कविता से प्राचीन ईरान के प्रति उसका प्रेम एवं अरबों के प्रति धीरना का पूरा आभास मिलता है। सभ्यता कुत्तर मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए उसने बाद में यूसुफ जुलेखा नामक मसनवी लिखी, जिससे बहावित शासक बहा दौला तथा उसके पुत्र सुल्तानुद्दौला को समर्पित किया है। तदुपरांत वो अपनी मातृभूमि तूस लौट आया और वहीं उसकी मृत्यु हुई है। उसकी कब्र वहां के दर्शनीय स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि जब उसका जनाजा पास के एक गांव के फाटक से निकल रहा था, एक कारवां सुल्तान महमूद के भेजे हुए 60,000 दिनार लेकर पहुंचा, जिनके कवि को आशा थी। फिरदौसी के पुत्री ने समस्त धन दान पुन्या में लगा दिया। शाहनामा की बड़ी ही सुंदर सचित्र हस्तलिपियां संसार के बड़े बड़े संग्रहालयों में सुरक्षित है। 1811 ईसाई में कलकत्ते में 1811 ईसाई में कलकत्ते में 1878 ईसाई में पेरिस में और 1877-1850 ईसाई के बीच लंदन से इसके संस्करण प्रकाशित हुए है। तदुपरांत भारत और ईरान से उनके संस्करण प्रकाशित हुए है। संसार के अनेक भाषाओं में इसके अनुवाद छाप चुके हैं। कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने फिरदौसी को ये वचन दिया था कि वो शाहनामा के हर शब्द के लिए एक दिनार देगा। वर्षों की मेहनत के बाद जब शाहनामा तैयार हो गया है और फिरदौसी उसे लेकर महमूद गजनवी के दरबार में गया, तो सम्राट ने उससे प्रत्येक शब्द के लिए एक दिनार नहीं बल्कि एक दिरहम का भुगतान करा दिया है। कहा जाता है कि इस पर नाराज होकर फिरदौसी लौट गया और उसने एक दिरहम भी नहीं लिया। ये वायदा खिलाफी कुछ ऐसी थे जैसे किसी कवि की प्रतिशब एक रुपये देने का वचन देकर प्रतिशब एक पैसा दिया जाए। फिरदौसी ने उसे से आकर महमूद गजनवी के खिलाफ कुछ पंक्तियां लिखी। वे पंक्तियां इतनी प्रभावशाली थे कि पूरे सम्राट में फैल गई है। कुछ साल बाद महमूद गजनवी से उसके विश्वासपात्र मंत्रियों ने निवेदन किया कि फिरदौसी को उसी दर पर भुगतान कर दिया जाए तो तय की गई थी। सम्राट के कारण पूछने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग साम्राज्य के जिस कोने में जाते हैं,
ہمیں وہ پانکتیاں سننے کو ملتی ہے جو فردوسی نے آپ کے ورود لکھی ہے اور ہمارے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اسے نردھارت در پر پیدا دے دیا جائے گا تو ہمیں بڑا نیتک بل ملے گا۔ سمراٹ نے آدیش دے دیا، دیناروں سے بھری گاڑی جب فردوسی کے گھر پہنچی تو گھر کے اندر سے فردوسی کا جنازہ نکل رہا تھا۔ پوری عمر غریبی، تنگی اور مفلسی میں کاٹنے کے بعد فردوسی مر چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ فردوسی کی ایک ماتر سنتان اس کی لڑکی نے بھی یہ دھان لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح سمراٹ کوی کا قرضدار رہا اور آج بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج فردوسی کا شاہنامہ جتنا پرسید ہے اتنا ہی یا اس سے زیادہ پرسید وہ پنکتیاں ہے جو فردوسی نے محمود غزنوی کے آلوچنا کرتے ہوئے لکھی تھی۔ فردوسی کے شاہنامہ دراصل فارسی کا اتہاس ہی نہیں، اسمتا کی پہچان ہے۔ اس میں پرچین فارس کی اپلبدھیوں کا بخان ہے، سمراٹوں کی اتہاس ہے۔ پرچین فارسی گرنتھوں کو نیا روپ دے کر ان کو شامل کیا گیا ہے۔ متحق اور اتہاس کے سمشرن سے ایک ادبھت پربھاو اتپان ہوا ہے۔ پریم ودروہ ویرتا دشتا منویتا یوت ساہس کے ایسے اتکرش ادھارن ہے جنہوں نے شاہنامہ کو فارسی ساہتیہ کی امر کریتی بنا دیا ہے۔ فارسی ساہتیہ میں شاہنامہ جتنی طرح سے جتنی بار چھپا ہے اتنا اور کئی پستک نہیں چھاپی ہے۔ فردوسی نے رستم اور سہراب جیسے پاتر نرمت کیے ہیں جو مانو سمرتی کا حصہ بن چکے ہیں۔ جیسا کہ لوگوں نے آپ نے بڑے کویوں کے ساتھ کیا ہے، فردوسی کے مقبرے کے چاروں اور سندر باغ ہے، ادھر ادھر ان کی پرتیمائیں لگی ہے۔ سنگ مرمر پر ان کی کویتا کے وشیش پرسنگوں کو اکیرا گیا ہے۔ پیارے شروطوں، یہ تھے ہمارے تپانی حکیم ابوالقاسم فردوسی کے بارے میں۔ ریڈیو آواز توجہ کے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

आवाज़ तैजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ तैजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।

हरी व्यंजनों के निर्माण में भाग लेते हैं और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों जैसे अंगूर सब्जियां और कृषि उत्पाद के संग्रह में शामिल होते हैं। शहरी गैस्ट्रोनॉमिक पर्यटन में पर्यटक खाद्य उत्पादन करने वाले कारखानों और उद्यमों की गतिविधियों से परिचित होती है। इस प्रकार गैस्ट्रोनॉमिक यात्रा पर्यटकों को विभिन्न स्थानों पर व्यापक राष्ट्रीय व्यंजनों से परिचित होने का अवसर प्रदान करती है। तजकिस्तान गणराज्य आने वाले कई पर्यटक ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा करना पसंद करते हैं ताकि वे स्वच्छ हवा में सांस ले सकें, देश की प्रकृति सुंदरता देख सकें और स्थानीय लोगों के जीवन तथा क्षेत्रीय भोजन संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। वे ग्रामीण महिलाओं द्वारा रोटी बनाने, कुरुत तैयार करने और शबुरीदा बनाने और विशेष रूप से वसंत ऋतु में सुमनाक तैयार करने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं जो कई प्रकार का होता है। ये ज्ञात है कि ताजिक राष्ट्रीय व्यंजनों को बनाने की प्रक्रिया उन्हें बहुत आकर्षक लगती है और कई पर्यटक भोजन पकाने के दौरान ताजिक महिलाओं के सहायता भी करती है। तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रीय व्यंजन विश्व बाहर में प्रसिद्ध है और ताजिक लोगों की पाकला सदियों के समृद्ध इतिहास के प्रभाव में विकसित हुई है। ताजिक राष्ट्रीय व्यंजन मुख्य रूप से सब्जियां, मांस और आटे से बने व्यंजनों पर आधारित है। सब्जी और मांस के कबाब, चिकन सोसेज, कुरुताब, शकरोप, कतलमा बहुत लोकप्रिय व्यंजन है। राष्ट्रीय भोजन को सुगंधित और औषधीय जड़ी बूटियां के साथ तैयार किया जाता है। ताजिक राष्ट्रीय व्यंजनों में ओश पलाव का विशेष स्थान है। वर्ष 2016 में ताजिक ओश पलाव को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ओश पलाव की 200 से अधिक बनाने की गतिविधियां मौजूद है। इस व्यंजन की तैयारी और उपयोग समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को एकजुट करती है। ताजिक ओश पलाव हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों में भी प्रस्तुत किया गया है और विदेशी पर्यटक इसके स्वाद का आनंद लेते हैं। तजकिस्तान गणराज्य के पर्यटन विकास समिति के अनुसार देश में 367 पर्यटन सेवा प्रदाता सक्रिय है, जिनमें से 225 होटल, 107 होटल और मोटल, 56 सेनेटोरियम, 6 उपचार केंद्र, 4 स्वास्थ्य शिविर, 10 विश्राम गृह, 1 पेंशन और 4 पर्यटन एवं मनोरंजन आधार शामिल है। निरीक्षणों से पता चलता है कि इन संस्थानों के जिम्मेदार लोग होस्टलों और मोटलों को राष्ट्रीय और आधुनिक डिजाइनों से सजाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्हें अतलास, एदरास और चकान जैसे पारंपरिक कपड़ों के डिजाइनों से भी सजाया जाता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। प्रिय श्रोताओं, आपने हमारे कार्यक्रम में तजकिस्तान गणराज्य में गैस्ट्रोनॉमिक पर्यटन का विषय विशद पर हमारी प्रस्तुति सुनी। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहें।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा, खुद बया हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।